वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू

Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, हर जुग जुग भगति उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया

दास जो सदगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीव त्रिग जीवास जिन हर जन सदगुर संगत पाई दिन

ईसा उहपन बृहद गगन ते पही सभन आन बधाई दई तन तन लोगन के राजा दुहटन दाह गरीब निवाजा अखिल।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आव सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो।

ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हादे ले हो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखण को शय करता।

अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूड़ चितलाए चतुरताया वही दुख दर्द पाओ निकट ना तर नर के रहे हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कहे चाओ पई संबद सत रह सह

हरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फाल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरखी देह मोह कोटक बिसन महेश कोड इंद्र ब्रह्मा किते राव सास क्रोर जलेह दोहरा

अरद करे खवासी खखे खखा वावे नु करना ससे नु खवासी खवासी कहिंदे कई इलाकों च चोबदार जेडे इस तरह नेजा बरछा लेके हजूरी च नहीं खड़े रहिंदे सन। ये जेडे नारद जी ने ते शारदा देवी है जेडी ए दोवें अकाल पुरख वाहगुरु दे दरबार च चोबदार बन के खड़े हुए ने, यानी ये उहदे मतहत ने, अकाल तो वड्डे नहीं, ये अकाल दे बनाए हुए ने, ये किरत है उहदी, ये करते नहीं गे। मैसेज की है, किरत नाल ना जुड़ो, करते नाल जुड़ो। चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र यह अवचेरा, तज चित्र है चित राख चतेरा। वाहगुरु ने बड़े बड़े वड्डे चित्र बनाए ने, ते तुसी उन्हां चित्रां विच ही मस्त ना हो जाओ, तुसी उन्हां चित्र उन्हां तस्वीरां नूं वेख के मसब्बर नूं भी सुरत विच लियावो। चित्रकार का भी ख्याल करो, उहदा भी आदर करो, भी जिन्हें एडे एडे सोहणे चित्र बनाए ने वो आप कितना कुछ सुंदर होगा। तुसी चित्र बचित्र यह अवचेरा विच ना उलझो, तज चित्र है चित राख चतेरा। तुसी चित्र सुरत चो कढ के चित्रकार नूं चित विच वसाओ, करते नाल जुड़ो, किरत नाल ना जुड़ो। नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कमलादासी, अज नूं माया कहिंदे आ, इह वी वाहगुरु दे चरणां विच बैठी होई है, भाव इह वी उहदे मतहत है। कंठे माला जेवा राम, आ जिहड़ी लोकी गल विच माला पांदे ने ना, कंठे माला, ये मैं नहीं पाता, कबीर साहब कहिंदे तुसी की करदे हो, वह कहिंदे मैं अपनी जीभ नूं ही माला बनाया है, मेरी जीभ दे उत्ते उहदा वास है, मेरे मन विच उहदा वास है, मैं गिनतियां मिनतियां दे चक्कर विच नहीं पैंदा, जदों दातां देण लगा नहीं गिणदा, ते मैं गिण के उहदा नाम क्यों जपा। हां जी, कंठे माला जेबा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। मैं हजारा नाम लै लै के उहदे चरणां विच नमस्कार कर रहा। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुरक दो समझावो। मैं हिंदुआं नूं भी समझाना, तुरकां नूं भी समझाना, आ गोमती ते हज दे चक्करां विच ना पवो, तुहाडा मन ही तुहाडा तीरथ है, अपने मन तीरथ दे उत्ते इशनान करो, वह तुहानू निर्मल करेगा। मन दे उत्ते काम करो, मन दे उत्ते जोर दिओ। एक बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच होर सांझा मन दे संदर्भ विच करदे हां,

सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होए बिचारो तित कर गाव हो सोहिला सिवरहो सिरजनहारो तुम गाव हो मेरे निरभउ का सोहिला हाओ वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े समालियन देखागा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसया कड़ियां पहरा थित्ती वारी माँ हो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तना श्री महला पहला गगन मैथाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोते धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडाओत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ

राग गौड़ी पूर्बी महला पंजवा, करो बेनंती सुनहो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ईहा खाट चलहो हर लाहा। आगे बसन सोहेला, औद कटै दिन सरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार बिकार संसे मह। तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए पिया वै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहज हो। हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पाव।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह
गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

पावड़ी, आपे खाणी आपे बाणी, आपे खंड वर भंड करे, आप समंद आप है सागर, आपे ही विच रतन तरे, आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनों गुरमुख करे हरे।

बंदर रंग रते रंग एकाय नानक जनक बिरत बिकाय अर्घा नाम जनको मुगत जुग तरकह नाम जनको त्रिपित भुग तरकह नाम जनका रूप रंग हर नाम जप का परे न पहंग।

नहीं हो तो वह उस गमन करतार करुणा मैं दीन बेनती कर नानु तुमरी कृपा तरा संग सहाय सो आवेना चीत जो बै राई तास्यो प्रीत बलुआ कह कर पीतर बसे अंध केल माया रंग रसै दृढ़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ ध्रुव

मैं सुखने रे कोय ना जाने तुम्हारा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल सामग्री तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते हो सो आज्ञा गारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुबाए, नानक हू ना सी जाई बिन नाम पत जाए। अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त का निमिखोट गवावे, एक बिना दे दस भी हेरले, तो मूढ़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा था को की जय। सद नमस्कार जाके मन रागा पर मीठा, सर्व सुख ताऊ मन बूठा, जिसन अपना कम मनाया, सर्व थोक नानक दिन पाया, अगंध छाप नी दे रास, खात पीत वरते आनंद उलास, अपनी अमान कश बाहर शाले, अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता, भी खोवे बाहर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्त आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने मात है, उसे चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सर्प्रहोवत जान अनेत, बिरकी छाया से रंग लाभे, बिन से मन पछतावे, जो दिशा सो चालन हाल, लपट रहो तय अंध अंधार बटाऊ, से जो लावे ने दागु हाथ न आवे, कहे मन हर गे नाम की प्री सुदाई, कर कृपा नानका भलाई लाई, मिथ्या धन धन धन कुटम समाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राजो बन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती आसु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्था, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या पु सुपन कर्त कुमान, अस्थिर भक्त साध की शरण, नानक जब जब जीवे हर गे चरण, मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या स्पर दर्भ को हेरे, मिथ्या नेत्र बेगत पार त्रे रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार गोतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन ही पार पुकारा, मिथ्या बास ले बेकारा, बिन बुझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बना के होवा सुचा, बिरथा नाम बिना तर अंध, मुखावत आके दुर्गंध, बेन सिमरन दिन रैन, बिरथा बेहाये, भेग बना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार दाम, तन तन तेजन जे घट बस्यो, हर नाहो नानकता के बल बल जाओ, राहत अब्र कशब्र कमावत, मन प्रीत मुखो गांड लावत, जन नहार प्रभु प्रवीन, बाहर भेखना गाहू भीन, प्रभु देशे आवना करे आवत, जावत जन्मा मरै, जिसके अंदर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नान उन जन चरण भराता, करो बेनती बार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने, आपे आप करत नवेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, बाप सियान सगल तेरा रहत, सबके जाने आत्म की रहत, जिस भावत सिलाई लड़दाए, थान धरंदर रया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जब नान करी सलोक, काम क्रोधर लोभ मोह बिन से जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जय प्रसाद सुगंधत तन लामे, तिसको सिमरत परम गत पामे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जय प्रसाद रंग रास भोग, नानक सदा ध्याए ध्यावन जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे, तिसे त्याग कतबर लुभावे, जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाट पहर ताका, जस का विजय, जय प्रसाद तुसब कव माने, मुक्ता को जस रसन मखाने, जय प्रसाद तिर रहता तरमन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जब दुर्गे मान पावे, नानक पात से ती कर जावे, जय प्रसाद आरोग कंचन देहि, लिबलावत सराम सनेहि, जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे, हर हर जस कहत, जय प्रसाद तेरे सगल क्षेत्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके, जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सा सा, सिमर सिमरो प्रभु ऊँचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे है, जय प्रसाद आपूखन पहरिजय मन तिमृत क्यों आलस कीजय, जय प्रसाद आसु हस तसुबारी मन तिप्रभ को कबू ना बेसारी, जय प्रसाद बाग मिलक तनारा पुरवे प्रभु प्रे मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठ बैठ सत से आई,
ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨਾੜ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਮਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਥ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਕਰ ਚਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਗਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਬਰਤਾਵ ਰੇ ਮਨ ਮੂਰਤ ਤਾਗੋ। ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸਿਵਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭਗੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਕਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਦਿਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ੁਨਾ ਕਿਨ ਹੋ ਲਿਆ।

नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का हो अचंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभा, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ बरदा, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सुर नान, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का है सगल मन माह है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदा खियार, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न बार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी परिणाम, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, वर्ताराय ज्वंतर नाम सर्मे पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक परस सगल नस्तार अष्टपति, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पार्थ रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा सबते जाने, आप सुखो मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हर मन की बासना मन थे ठरा, इंद्री जित मन दोग ते रहत नो अनकूट मदे को ऐसा अपरस, वैष्णो सोज सुप्रसन्न वैष्णो सोज सुप्रसन्न मिशन की माया ते हो भिन्न, कर्म कर तो वह ने कर्म तिस वैष्णो का, निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाशा, केवल भगत कीर्तन संग राचा, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब उपरोपत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नान को वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मंदिर पिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोबे तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल कराए नित नीत, मंथन अर्पा बिशन प्रीत, अर्घ चन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध राम नाम आता मैं सोते राम नाम सारस पीबे, उस पंडित कह उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल सुख मैं जाने, स्थूल चहवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना मैं जपे कौ नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्व रोग औखद नाम कर्यान्द्र मंगल गुण गाम, काहू जुगत कि तेना पाइये, धर्म नानक तिस मिले सिर गया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दाद संदन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सोदास दर्गे प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी फराए, सगल संग आत्म दास, ऐसी जुगत नान ग्राम दास, प्रभु किया गया आत्म है तावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसर्ग तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैस सुबाटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा बिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत नान को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव, जिद कर राखे तैसा तिन्ना वापे, करण करामन जो पर पावे, सुफन होग पसुरिया पे अंतरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मध्य तैसा परगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पाए निहाल, सलोक उस्त करहे अनेक जान, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान ब्रह्मे उदासी, कई गुड़ वेद के स्रोते, कई गुड़ तपीसर होते, कई गुड़ आत्म ध्यान धारे, कई गुड़ कब गा बिचारे, कई गुड़ नफत नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई गुड़ भय अभिमानी, कई गुड़ अंध ज्ञानी, कई गुड़ कृपन कठोर, कई गुड़ अभिगातम निकोर, कई गुड़ पर दर्प को हिरे, कई गुड़ पर दुख ना करे, कई गुड़ माया सरम माहे, कई गुड़ प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तलगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई गुण सिद्ध जति जोगी, कई गुण राजे रथ भोगी, कई गुण पंखी सर्व उपाय, कई गुण पाथर बिरख नभ जाए,
கைகோடு பமனபாணி சந்தர் கைகோடு தேச பூமண்டல கைகோடு சசியர சூர நக்ஷத்திர கைகோடு தேவதானம் எந்தர் சேர சதர சகல சமகிரி அபிநய சூத்தாரே நான் பாபாஸ்தாரே கைகோடு ராஜதாமசாத கைகோடு பேத பிரான் சிமர்த்தர சாஸ்த கைகோடு கீரத்ன சமந்த கைகோடு நானா பிரகார் ஜந்த கைகோடு கீயேச்சர் ஜீவே கைகோடு கிரி பேர் சுவர்ண தீவே கைகோடு ஜக்க கிணர் பிசாஜ் கைகோடு பூதபிரே சூகர் மிருகா சப்தே டேரா சபூத்தே தூர் நானுகா பலப்திரியா பிரபூர் கைகோடு பாத்தால் கேவாசி கைகோடு நர்க சுர்க நிவாசி கைகோடு ஜனமே ஜீவே மரே கைகோடு பௌ ஜூன்னி ஃபிரே கைகோடு பேட்ட தீ காயே கடுகு கைகோடு காலே தக பாஹே கைகோடு கீயே தர்மந்த கைகோடு மாயா மே சிந்த ஜெய ஜெய பானா தே தே ராக்கே நான்கு சபகுஷ் பிரபகா ஹாத்தே கைகோடு பய பைராகி ராம நாம் சங்கி கைகோடு பிரபு கோகோ ஜந்தயாத்தம பார்பிரம்லஹந்தே கைகோடு தர்ஷன் பிரபியாச தென்கோ மிலோ பிரபுநாஸ் கைகோடு மாங்கே சாத் சங் பார்பிரம் தெல்லாகாரங் ஜன்கோ யாப் சுப்ரசன் நானக் தே ஜன சதா தன் தன் கைகோடு காணியர் கண்ட கைகோடு ஆகாஷ் பிரம்மாண்ட கைகோட்டு ஹொய அவதார் கை ஜுகத் கிண்ணோ பிஸ்தார் கை பார் பசரியோ பாசார் சதா சதா ஏக ஏகங்கார் கைகோடு கிண்ணே பாவத் பாந்த் பிரபதே பிரம்மா சமாதா காந்தன ஜான கோயே ஆபே ஆப் நான் பிரபசுவே கைகோடு பார் பிரம் கே தாச தினோ பதாத்தம் பிரகாஸ் கைகோடு தாத்துக்கே பேத்தே சதா நே அரே கோ நேத்திரே கைகோடு நாம ரஸ் பீமே அமர் பய சசதி ஜீவே கைகோடு நாம குண காமே ஆத்தம ரசுக் சஹஸ் மாமே அப்னே ஜன கோ சா சா சமாரே நான் கோ பரமேஸ்வர கே பியாரே சுலோக கர்ண காரண பிரபு ஏக ஹே துசர நாஹி கோயே நானக திஸ் பலிஹாரண ஜல் தல மையல் சோய் அஷ்டபதி கர்ண கராமன் கர்ணா ஜோக ஜோத சுபாவே சுயி ஹோ கண்மே தாப் உதாபன ஹாராந்தன இங்கிஷ பாரா பாரா ஹுக்மே தாரா தர ஹாவே ஹுக்மே உபஜே ஹுக்ம சுமாவே ஹுக்மே ஊஜ நீஜ் வியவஹார் ஹுக்மே அன் கராங்க பிரகார் கர் கர் தேக்கே அவனி வட்டியாயி நான் சமரியா சமாய் பிரபாவே மானுகத பாவி பிரபாவித பாத்திர தராவே பிரபாவின் சாஸ்தே ராக்கே பிரபாவித ஹர்குண பாக்கே பிரபாவித பத்துதாரே ஆப் கரே ஆபன் பீச்சாரே துவான் சனியாங்காப் சுவாமி கேல பிக்சி அந்தர் ஜாமி ஜோ பாவே சுகார் கராவே நானுக திருஷ்டி அபர்ணாவே கஹுமானுதே யாவயாவே ஜோதஸ் பாவே சுயி கராவே இஸ்கே ஆதுத சப் ஜிலே ஜோதஸ் பாவே சுயி கரே அன் ஜான் பிக்யா மே ரச்சே ஜே ஜான் தே ஆபன் யா பச்சே ਪਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈ ਦਸਤਾਵੇ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਗੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾਮ ਮਿਲੇ

आपदेशा समझिया बाप रचा सबके साथ आप किनु आपन विस्तार साब का शुसगा ओ करने हार उसे पहन कह किश होए धान थलंतर एकास होए अपने जलत आप करने हार कौत कर रंग आप हार मन में आप मन में आप मन अपने माहे नानु कीमत कह ना जाए सत सत सत ब्रह्म स्वामी गुरप्रसाद कहना बख्यानी सच सच सत सबकीना कोट मदे कहना बिरलिया चीना भला भला भला तेरा रूप सुंदरिया बार अनूप निर्बल निर्बल निर्बल तेरी बाणी घटघट सुनी सरावन बख्यानी पवित्र पवित्र।

राष्ट्रपति संत के दुख ने आर जागड़ है संत के दुख ने जमते नहीं छुटाए संत के दुख ने सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख ने मातोए मरीन संत के दुख ने सो बाते हीन संत के हाथे को रखे ना कोए संत के दुख ने धान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरा संत का दुख दे मुख पवाए संतन का दुखन कागजो लवाए संत का दुखन त्रिग सर्व जोन पाए संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन कर्माए संतन का दुखन तृष्णा में जलाए संत का दुखन सब को शलाए संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे ता वे भीगत पाए संत का नंदक महतताई संत का नंदक खिंट करना पाई संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राजते हीन संत का नंदक दुखिया अर्दीन संत का नंदक सर्व रोग संत का नंदक सदा बिजोग संत के निंदा दोख मैं दोख नानक संत भावता उसका भी होए मोख संत का दुख सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते ठराए संत के दुखी को ना ही ठाऊं नानक संत भावेता लय मिलाए संत का दुखी आद बीज ते टूटाए संत का दुखी किते काज ना बहुचै संत के दुखी को ध्यान भरमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंतर दे थोथा जो सांस बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ की शना है आपन भी जापे ही खाए संत के दुखी अवर न राखन हार नानक संत भावे तलाए उबार संत का दुखी एओं बिल लाए जो जाल भी हुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद नहीं त्रापै संत का दुखी छुटा अकेला जो वाड़ तिल खेत माए तो वेला संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तन का त्रही पया नानक जो तस भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ू पे जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजना आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया करतना मिट्टा कोय नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ दिस गयो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात से त्यावो सास गिरास सब कुछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन का है विचार जिसनु कृपा करे तो सब नाम दे ਬੜਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਰੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨ ਬਸੁਰ ਜਨ ਸਿਮਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕਾ ਸਰਮਨ ਰਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਗਏ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਗਾ

गोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुवेला कर ले जियो नैनो बेग ठाकुर का रंग सा संग विंसे सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे बाप जपिय हरबिंद कर हर कर्म सर्वनर कथा अर्थर के नानक जल मथा बटभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तन बंद करे संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक बछाने तुकियो सोची जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तेरे निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहार जन रहत अंतन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जन की आशा तिसकी कटिए जमकी फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस न लागे दुख जिस गौर ब्रह्मां चित आवै सो संसवेला नहीं डुलावै जिस पर अपना कृपा करा सो सेवक कहो किसते डरा है जैसा सत ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सूदत सूदत सूदत सीजिया गुर प्रसाद तत्सर बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोइय सूल नै के जन्म नै किश मरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल में आप आन जो थाप अभिनाशी नायक खांड धारण धारे ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए था नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा मंथ सकल संसार उतरे तन मंथ प्रभ के सेवक सकल उदान प्रभ के सेवक दुख बिसार नापे मेल लय कृपाल गुरका शब्द जा पाए निहाल उनकी सेवा सुई लागे सुनु कृपा करे बट भागे नाम जब तपामे बिसराम नान तिन प्रख उत्तम करमान जो किश करा सो प्रभ का रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वैसो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना स्तेव जेत समाए समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सरोग सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जागे सिमरन उदरीय नानक तिस बलिहार राष्ट्रपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा गोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी फिर व्यापे आवापन किया कशु न होए जसो प्राणी लोचा गोए तिस नाही तेरा किश काम गत नान जप

साजनानुको सीपे अष्टपदि चरण सात सर्त प्रसन्नहार पूजा सात सा सेवदार दर्शन सात सात पेखनहार नाम सात सा ध्यानहार आप सात सा शब्दारी आपे गुणा पे गुणकारी शब्द सात सत प्रभगता सुरत सात सज सुनता भुजन हार को सत सब होए नानक सात सात प्रभु सोए सात स्वरूप हृदय जन मान्या करण ग्राम दिन मूल पछाण्या जागे हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पैते निर्भोय बसाना जिब जात समाए समाना वस्त भाए ले वस्त गढ़ाई जागो भिन्ना कहना जाई बुझे बुझना विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवा आज्ञाकारी।

ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक है जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक साह सा संवारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक ही सरभर राखे अपने दास को दे बटाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक ही आपद राखे ताकि कदमित कोय ना लाखे प्रभु के सेवक को कौन पहुँचा प्रभु के सेवक पूछते उचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दैस दैस प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे भस्म करे लसकर कोट लाखे जिसका सास न काटते आप ताको राख देख रहा हाथ मानस जतन करत बो भान तसके करत बिरते जात मारे ना राखे अब न कोय सर्व जिया का राखा सोए काय सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभलाख बिडाणी बार बार बार प्रभु जबिय भी अमृते मंथन तृपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकी शबर नाय दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम राजो जन त्रिपताने मंत्र ना मैं नाम समाने उठत बैठ सोभत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जा जे बा दिन रात पर अपने जन की नी दात करे भगत आत्म कह चाहे पर अपने स्यों रहे समाय जो हो आहो सो जाने प्रभ ने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखाना हो तिसका गुण का एक ना जाना हो आठ पहर प्रभ से सूरे गाओ नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मंत्र अपना तेन जन देहे जन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व थो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके तर सब पाप मिटावे अब्र स्यारम सगरी शाठ तिजन की तू सेवा लाग आमन जाना हुई तेरा नानक तिजन तिस जन के पूजो सत बैरा सलोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिस गा नाओ तिसका संग से कुदरा है नानक हर गुण गा अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हराय गुर बचनी हर नाम चराय सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हट है सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख भागी है सतगुर सिखा हलद पल सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल संभार है गुर का ग्रह सेवक जो रह गुर की आग्या मन में सहाय आप सिखो कर खशना जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवै मन बेचा सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रा सेवा कर तो ने कामी तिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुर की मत रे सी भी विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की रत जान सो सतगुरु सिरदे हर नावन कबार गुरु को बल जाओ सरबनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कश परम सह सियान बलया ना जाइए नान कैसा गुर बटभागी पाई है सबल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम निर्भय पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन कर आगा ने मन संतो खातम पति आने पूरा गुर अखे जाका मंत्र अमृत दृष्ट बेखे व संत गुण बेअन कीमत नहीं बाए नानक जिस भाव तिलाए मिलाए जे बाए कुछ सतनेक सतपुरुख पूर्ण विवेक काह बोला पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत गिने ना पाई अनक भगत बंदन करे चरण का हृदय सिमरे सतबलहारी सतगुरु अपने नान जिस प्रस जानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हरस पावे जन को अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुर का नाही कदे बिना जागे मन प्रगटे गुंतास आठ पैर रखा नाम ले सजुब दे सेवो को दे मो माया के संग न रे मन में राखे हर हरेग अंधकार दीपक वर्गा से नान परमो सुख तहते दासे तप्तमाय ठांड बताई तप्तमाय ठांड बताई अनंत व्यातु कराठे पाहे जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण मदेसे पाजुका निर्भय बसे सगल व्याद मंते खै नसे जिसका साधन कृपा धारी सासंग जप नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस श्रवण दुर्गुण आप सरगुण भी वही कला तो अर्जुन सगरी बोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपने कीमत आपे पाए अरविंद दूजा ना ही कोय सर्व निरंदर एको सोयोद बोध रवया रूप रंग भय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी गलधारी अनक बार नानक बलिहारी स्वरूप साधना चाले बिन भजन लिखिया सगरी शार हर हर नाम कमावना नानक तानु सार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करणकार सो प्राप समराथ दृढ़ कर गह हो नाम अलवाथे तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत
ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਬਿਟ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਗੁਣ ਉੜਤਾਵੇ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਸੁਕੁਨਤ ਬਾਛੇ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਅਨੁਕ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਅਵਖਦ ਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਬ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪਰਮਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਰ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੈਤ ਸਥਾਪਤ ਆਵੇ ਠਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਵਿੰਦ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਦ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚ

और अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात सुभावता सिर्फ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न ही किशोय अपन सोच सब जगत परोए जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोय जन पाए सो समदर्शी दत्त का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस को ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस सज

तेहा कोई ना सुझाई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबले आकाश।

सर्वं पाले रुआल शांत वय प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त जौन प्रखे अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवादि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्तर तत्तर

अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह बेद और कतेव हरूप रंग ना जात पासो जान ही कह देव।

प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाजरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रे न मित्राय परे है पवित्राय परथिसे अधिसे अदृश्य अकृष्य भगवती शांत वै प्रसाद कहते के आछेद देश है के अपेज पेस है के अगांज कर्म है के अपांज परम है के अपेज लोक कै के अदित शोक कै के विभूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपहो अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चितरंग विहीन है के अधीन है

सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र तरावन है के सर्वत्र पराण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य दैव प्रधान्य के सर्वत्र झाप्य है के सर्वत्र स्थाप्य है के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र

प्रसाद नमो नरक नाशेह दैवंग प्रकाशेन अंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतराय न पुत्राय न सत्तराय न मित्तराय

हर नर खंड बर नर मंड अनुपहनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल जल थल दाम अनसने अंग आसने अपंग उपमांग पार गत मिति उदार जल थल अमंड देस वेस अपंड जल थल महंत देस वेस बेअंत अनुभव नास त्रित तार तो रास आ जान बाहो एक सदाहु अंकार याद कसनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम वंशजगात

अटाह अनाथे परमाथे अजो नियमो नी नागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे लेखे पिजांग प्रयासंद नमः तल प्रणाम।

जारे भूत भविख भवान कृपत कान गण नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भरे बिनवंत कवंत के ताम सिधारे।

रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा तब चरणन मर है हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सब तुम काब हो।

नमस्कार तिसहि कह हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मो बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशांत।

कन्या आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते

पाए कवेख परसन आया। लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।

देव दृष्ट होई। ये श्रवण हो मेरे हो सात्य सुन नैनो पठाए, सात्य सुन नैनो पठाए, श्री निलाय सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हो, रसना रस समाणी, सच लख विडाणी। ताकि गद कही न जाए, कह नानक अमृत नाम, सुनो पवित्र हो बहु सात्य सुन नैनो पठाए।

आनंद सुनहो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वे सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे।

आज उपदेश बख्शिश कर रहे हैं शेखा अंदरों जोर छड तू पाओ कर चल गवाए। सो गुरु स्वरूप साध संगत जी, शेख एक लकब है। शेख शब्द अज भी तुसी अरब खिते विच वेखो ते जिहड़े मौत बेर लोग ने, बड़े बड़े उत्थे वड्डे तानाड़ ने, रॉयल फैमिलीज ने, और नाल नाल वो इस्लाम दे दृष्टिकोण तो परहेजगार भी ने, आमूमन उन्हां नूं शेख कह के मुखातब उत्थे लोग हुंदे ने। चुनांचे बाबा फरीद जी नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब विच भावें असीं कह दिंदे आ भी 15 भगतां दी बाणी है, पर उंज फरीद साहब नूं गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी लिखण लग्या जिहड़ा उपर सरलेख है, उत्थे बाकी भगतां नूं ते भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, भगत तन्ना जी इत्यादि लिखिया है, पर जदों आप जी दी बाणी लिखी जांदी है ते बाणी शेख फरीद जीओ की, भगत नहीं उत्थे लिखिया हुंदा। ए चेता रखण वाली गल है। शेख हजरत ए दो लकब ने बड़े सत्कारयोग, ये राजनीतिक बंदे दे सामने भी लग जाते ने, यह धार्मिक बंदे दे नाल भी जुड़ जाते ने। तो शायद महाराज के संपर्क विच कोई शेख है जिहड़ा जीवन सफल ते करना चाहुंदा है, जोर बड़ा ला रहा है, कोशिश बड़ी कर रहा है, जतन बड़ा कर रहा है, पर लगता है भी किसी रसक पुरख ने उहदा मार्गदर्शन नहीं किया। हालांकि ये उपदेश उस कल्ले शेख वास्ते नहीं, साडे सारियां लई है जिन्हां जिन्हां दी बिरती उस शेख वर्गी है। कई बार रब दी प्राप्ति वास्ते भी असी जोर नाल काम करना चाहते हैं। तो इत्थे महाराज कहिंदे ने शेखा अंदरों जोर छड तू, एक काम जोर वाला नहीं है, एक काम जुगत वाला है। जुगत ये जड़ा तू अंदरों हट कर रहा है, ये हट नाल प्राप्ति नहीं होती। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच इस संदर्भ विच होर थावां ते भी उपदेश दिता है, मन हट किन्हें ना पाया, धन गुरु रामदास। मिलदी जुलदी पंक्ति है, मन हट किन्हें ना पायो, धन गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने उत्थे पायो लिखिया, गुरु रामदास ने पाया। दोवें गुरु साहिबान दे बचन ने भी मन दे हठ नाल, मन दे कले जोर नाल उहदी प्राप्ति नहीं हुंदी, उहदे नाल जुगत चाहिए। ओ जुगत की है? इस श्लोक विच उस जुगत नूं एक्सप्लेन किया गया। हजूर फरमान कर रहे ने शेखा अंदरों जोर छड तू, फिर की करा, पौ कर चल गवाए। चल चल पुणा शैदाई पुणा, कमलापन छड दे, ते तू की कर, अज तो गुरु दे भय विच विचरना शुरू कर दे। हुण गुरु दा भय की है? गुरु स्वरूप साध संगत जी, बहरूनी तौर ते गुरु दा भौ ते इह है वी जदों असीं गुरु की हजूरी विच आवीए ते निर्मल अदब साडे अंदर होवे। अज जदों असीं वख वख स्थानां ते देखने आ ते उहदे विच कमी आई नजर आउंदी है। तुसीं किते मजबूरी वास किते तुहानूं किसे मजिस्ट्रेट कोल जज कोल जाणा पए ते असी बड़े सलीके नाल अंदर अपने कफ वगैरह दा बटन लगा के, कॉलर दा उपरला बटन टाई चंगी तरह कस के,
ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਟੋਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਉ ਕਰ ਝੱਲ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਕਮਲ ਕੂਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਹੱਟ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ

का तू है, कित को साहिब आवे रू है। जो तू साहिब आवे रू है, तू उन्ना का तेरे ऊ है। असी बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तुल है तुल। जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजो कटे कट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए। गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह परवान। श्री राग महला पहला कर चौथा, तू दरियाओ दाना बिना, मैं मछली कै

परम आइये मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावे मर बिष्टा माहि समाए मन रे ग्रही माहि उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होई परगास रहाओ गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त कर मैं पाई हर का नाम ते आइये सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करे नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिने पहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिद्ध फिरे ओना।

भंडार भाई रे इस मन को समझाए। ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याय रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जो गुरमुख करे विचार। पाखंड भगत न होवे दुबदा बोल खुआर। सो जन रलाया ना रले जिस अंतर बवेक विचार। सो सेवक हर आखिए जो हर राखे उरतार। मंतन सौंपे आगे तरे होमे विचो मार। तन गुरमुख सो परवान है जे कदे न आवे हार। करम मिले त पाइए बिन करमे पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मिले सो मिले हर राए। नान गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदन नाम त्याइए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे पाए। गुर सरणाई सुख लहे अंदन नाम त्याए रहाओ। साचे मैल न लागई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे होमे तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमी हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याइए एक नाम करतार। नानक नाम त्याइए सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे व्याप्या बैराग उदासी ना होए। शब्द न चीने सदा दुख हर दरगह पत खोए। होमे गुरमुख खोइए ना मरते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा। सतगुर से मुह पर जले कर ही माहे उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद। अहनस भगत करे दिन राती होमे मार निचंद। बड़े पाग सतसंगत पाई हर पाया सहज आनंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम बसाए। अंतर लागन तम समूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु देखालिया हर सपिया गाए। जिन किने पाया साध संगती पूरे भाग बैराग। मनमुख फेरे न जाने सतगुर होमे अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम।

अमृत छोड़ बिख्या लुभाणे सेवा करे बिडाणी अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंदिन दुख बिहाणी मनमुख अंध न चेतई डूब मुए बिन पाणी मन रे सदा भजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसरना जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच होमै दुष्टि पाई आवण जाना जमण मरना मनमुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छा सो फल पाए जात सत तप पवित शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हो तिनके बल जाऊं दर सच्चे सच्ची बड़ियाई सहजे सच समाओ नानक नदरी पाईए गुरमुख मेल मिलाओ श्री राग महला तीजा मनमु करम कमावणे ज्यों दुहागण तन सिगार सेजे कंत न आवई नित नित होए खुआर पिरका महल न पावई ना दीसे करबार भाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहै जप राम नाम सुख पाए रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राख्या उरतार मिठा बोले निब चल है सिज रवे पतार सोभा बंती सुहागणी जिन गुर का हेत अपार पूरे पाग सतगुर मिले जा पागे का उदो हुए अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त हुए गुर के पाणे जो चले दुख न पावे कोए गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए जिना प्राप्त तिन पिया होमै विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याईए सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा पिर जाने अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया सोई कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साच बड़ाई दे पाई रे गुर बिन भगत न होए बिन गुर भगत न पाईए जे लोचे सब कोए रहाओ लख चौरासी फेर पया कामण दूजे पाए बिन गुर नींद न आवई दुखी रहन विहाए बिन शब्दे पिर न पाई।

अष्ट पदिया आख आख मन भावना ज्यो ज्यो जापै वाय जिसनु वाय सुनाई है सो केवड़ कित थाय।

0: वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिबान रहमत कीती है जो कि लड़का भाई अमितोज सिंह बिनवैत अते लड़की तवीना कौर गिल दे सुभनंद कार्य इस वेले संपूर्ण होए हन। पठानकोट धनवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी होना दा जिन्हां ने कार्य संपूर्ण किए हैं। सो दोनों ही परिवारों दासरियां वालों अते मैनेजमेंट कमेटी वालों बहुत बहुत बधाइयां जी। सतगुरु साहब जी रहमत करन दोनों परिवारों ते सीस ते मेरा प्रार्थ रखन। अते बहुत बहुत धनवाद ज्ञानी जसविंदर सिंह जी होना जिन्हां ने लावां दी सेवा निभाई है। सो हुण जो सुभाग जोड़ी नूं सिरोपाव दिते जाणगे, उपरंत जो एक जो कविता ढाडी सिंह ने मंगलमई समय ते बोलनी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, कलजुग के जहाज बाणी के बोहत जुगो जुगे अटल, शब्द अवतार वाली है दो जहां, चवर छत्र तख्त दे मालक गरीब निवाज पातशाह, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद अंदर सजी बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला आपा फतेह जी सांझ करिए, गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा ही सुभागा समय, इस सुभागे समय सतगुरां ने जड़िया खुशियां दित्तियां ने, आपा उन्हां खुशियां नूं सारे मिलके माण रहे हां। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरमुख सिंह जी अते सरदारनी कमलजीत कौर जिन्हां दे लखते जिगर काका अमितोज सिंह अते बेटी दवीना कौर, इन्हां दे आनंद कारज हो रहे ने। सरदार जसवीर सिंह जी अते सरदारनी सतविंदर कौर जिन्हां दी बेटी दवीना कौर, सो ए दो परिवारों का सतगुरु जी ने मेल किया है, दो रूहां का सुमेल किया है, जानी बनवैत ते गिल परिवार ए एक होए ने। सतगुरु जी कृपा करन काका अमितोज सिंह अते बीबी दवीना कौर के सर ते मेरा भरिया हाथ रख के इन्हां नूं सदीवी खुशियां बछण, अपने दरों घरों नाम दान चढ़ती कला दिया दाता रक्षण। इस मौके मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर ढाडी जगत के विच जिन्हां दा बड़ा माण है, वीर सरबजीत सिंह जी साजल साहब वह भी बैठे ने, उन्हां दा असीं जथे दी तरफों स्वागत करते हाँ। आओ

मन मन अंतरा फिजे राव जन्म जीत मन मन मन आप मुआ मन मन ते जान्या निजर वही कर जान्या जत सत तीर्थ मजन नाम अदार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मन तो पर खजाओ किस जा चू ना ही पसाओ गुरु नानक गुरमत सह स्वाम गौड़ी वाला बैला सतगुर मिले सो मन लगाए।

अवर पंचम यमजना क्यों राख कर वर्मना मारे लुटे नीत नीत के सागे करी मुखार्जना श्री राम नामा चमना आगे जम तला बेतुकना रहो और सारी उड़ोली राखे द्वारा भीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामण अवर लुटेन सो भंजना टाई उड़ोली लुटिया देरा सा तन बगड़ी एक जना जम डंडा कर संगल बढ़िया भाग गए से भंजना कामण लोड़े सो नरो वा मित्र लोड़े सो खाता था

वचन वास करे सचोए साची वाणी जुग चारे जापे सावके च साचा आपे आपे कर्म होए सात संग बुलाए हर गुण गावे वैस सोताए रहो जालोए जीवा तो जीवाए हर न जाके भी कलाए बैन

गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हसे पी सच राम कले सादिक अंकार सत गुरु प्रसाद जगदाता सोए भगत वचलता लोए जियो गुरु शब्द समावे वरना जाना कोय जियो।

चर शब्द न पीजे हर के नाई रहाओ सबो सूतक जेहा मोहकार मरमर जमे बारो बार सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता के शिकाहे सूत कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेव्या सूतक जाए मर न जन्मे काल न खाए सास सिमर सो देखो कोए बिंडावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल मैं गुरमुख उतर स्पार साचा मर न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा पान धारा हर जियो राखो हृदय और तारा गुरमुख सोभा साच द्वारा पंडित हर पढ़त जो विकारा गुरमुख भोजन उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हमें जाए गुरमुख मेलन लागे आए गुरमुख नाम बसे मने आए गुरमुख कर्म तरों सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने न कोई गुरमुख समझाओ सदा सुख होई मन मुख डांव चतुराई जो कुछ कमावै सो थाए न पाए आवै जावै ठौ नकाई मन मुख कर्म करे बहुत अभिमाना भग ज्यों लाए बै नित ध्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे बड़ियाई साहिब की पत्री साहिब की पुत्री बदार गवाई नानक बिन नामे झूठी चतुराई गौड़ी महला तीजा इस जुग का तरम पड़ो तुम पाई पूरे गुर सब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सखाई

मेरा प्रभु पाया गुरु के शब्द सीधे सतगुर मिले प्रभु मिलाए मेरे प्रभु साचे कह मन पाए हर गुण गावे सह सुभाए बिन गुरु साचे परम पुलाए मन मुख अंधे सदा भिख खाए जाम डांड सहाय सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई थमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर से वैसे जन निर्मल पवित्ता

आप गवाए, आनंद बाणी शब्द बजाए, सत उठते कवन कवन नसी दो मेरे भाई, भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम बढ़ियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाने परम न जाए, बंधन न टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरु प्राणी परम गवाए, सह तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते पावन हारा, मर जम्मे फिर बारो बारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माहे समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो बिसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच बरताए, साच न छपै जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सहज सुभाए, गुरमुख साच रहा लिवलाए, हमें माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, आपे करता आस सज जिन कोई, तिस बंधु जाव न कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोल गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सहज समावै, अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हरस पावै, आंदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुण तास, दासन दास नित होवै दास, ग्रह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब सो प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्त्र होए, हुकुम पछाणे बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझते पत होए, कृपा करे गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मैं लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर विकसे अंतन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे बटपागी, होमे ममता दुर्म दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास, जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए, हृदय साचा नाम बसाए, नानक सहजे साज समाए, गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया, पै सहज सुभाए, शब्द मन रंगिया लिवलाए, नजकर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवै जाए बमान, गोविंद पाई है गुण निधान रहाओ, मन बैरागी जब शब्द पौखाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रह समाए,

सगल मिटाई, सदा नंद हर नाम लिव लाई, गुर मिलया हमको शरीर सुध पई, होमें तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गहली, हर आपे कृपा करे नाम देवै, गुरम

प्यारा बिछड़ चोटा खाए मन कर हला मेरे प्रीत मां हर दे पाल पलाए उपाय कितना लभई गुर हिरदे हर दे खाए मन कर हला मेरे प्रीत मां दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन कर हला तू मीत मेरा पखंड लोभ त जाए पखंड लोभी मारिया जम डण दे सजाए मन कर हला मेरे प्राण तू महल पखंड भरम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन कर हला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह पाया पसरिया अंत साथ न कोई जाए मन कर हला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए